सोदर राग आशा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन

गावन तुदन मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे

जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, होर किते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन। नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए,

ज्ञान सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रास नाम ना पाया।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सह कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट

तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै हर त्यावै है तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी।

नानक गुरमुख परगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ह पहिले निवासा। पाणी पावको तिन्ह किया पंकज मोह पाग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या।

मिल साध संगत पाजो केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय।

ताको कर्पाहन अनुमानत महामूड काशपेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार काचीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारो आसिख संगरो दुष्ट जेते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हावै मरे।

तनक मोह हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने सिमरत शास्त्र वेद सबै बह भेद कहे हम एक ना जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ दोहरा।

आपे जगत उपाय गुण अवगुण करे विचार त्रै गुण सर्व जंजाल है नाम न तरे प्यार गुण छोड़ अवगुण कमाव दे दरगाह हो हे खुआर जुए जन्म तिनी हारिया कित आए संसार सच्चे शब्द मन मारिया अहनिस नाम प्यार जिनी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्से सो पाए सी गुर शब्दी विचार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्से सो पाए सी गुर शब्दी विचार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो श्रद्धा प्यार अदब सहित गुरु चरणा विच शामा दे दीवान दी हाजरी पर रहे हो प्यार सहित गुरु चरणा विच जुड़ बैठ के आप जिया ने पावन बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला अते उन्हां दे जत्थे पासों सरवन कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी विचार दा कथा दा आप जिया ने पावन पवित्र पौड़ी दा पाठ सरवन कीता है जो मलार राग अंदर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी पावन वार है उस वार दी ये 13वीं पौड़ी है। इस दे नाल दो श्लोक सतगुरां ने दर्ज कीते हन जिन्हां दी विचार कल हो चुकी है। श्लोक तीसरे गुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे श्री कंठ तों उच्चारण कीते गए हन जिन्हां दा भाव विचार आपां कल समझिया सी कि गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने बबीहा रूप जीव आत्मा नूं इह समझाया सी कि इह जीव आत्मा जे तू वाहिगुरु परमेश्वर दा संग प्राप्त करना चाहनी है उहदे विच अभेद होना लोड़दी है तां तैनूं गुणां दा विथार करना पएगा उस अकाल पुरख दे गुणां नाल जुड़ना पएगा। गुण कह गुणी समावनिया वाली तेरी अवस्था जिन्ना चिर नहीं बनेगी तू दे विच अभेदता हासिल नहीं कर सकती ते ओ गुण कहन दी ताकत समझ तेनू उदी कृपा नाल उदी बख्शिश नाल प्राप्त होनी है ते बख्शिश जेड़ी है ओ अरदास दे नाल जोदनी दे नाल तरलिया नाल प्राप्त होनी। इस श्लोकां दा भाव सी
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

साध जय कर कीरत आखी है करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवर सृजनहारो तुम गावो मेरी निर्भव का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे धन है कीमत ना पवे तिसदा ते कमण समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन सीसड़िया जो वै साहेब स्यो मेल घर घर एह पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन रागा सा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुरु गुर एको वेस अनेक बाबा जय घर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोय रहाओ इस विच सियां घड़ियां।

रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावै सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदन मोहे आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारिंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तने अंतर हों मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुपै दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ

जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां, गुरपुरै कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इसनान गृह आए, अनद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु, धन गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी ने कृपा कीती है, अमृत वेले पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदार बख्शिश कीते हन। अज दे पावन श्री मुखवाक सतगुरु जी पासों आप जी ने सरवण कीते हन। सोरट राग अंदर पंचम पातशाह जी दा पावन शब्द पवित्र अंग 621 अते 22 उपर सुभायमान है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने इस पावन शब्द विच एक कृपा मेहरामत कीती है कि जिन्हां उत्ते पूरे गुरु की कृपा हो जाए, पूरे गुरु कृपा सदका प्रभु प्यारियां दा संग उन्हां दी बख्शिश प्राप्त हुंदी है। जो भी जीव तन मन दा इसनान करके अंतरात्मा निर्मल हो करके अपने निज घर अंदर विराजदे ने टिकदे ने, उन्हां नूं ही अंदर दी खुशी अंदर दा आनंद प्राप्त हुंदा है। उही सारे रोग दुख कलेशां नूं मिटा करके वाहिगुरू दे घर अंदर चरणां अंदर प्रवान हुंदे ने, सारे बिघड़ां दा रोगां दा उह नाश कर लैंदे ने जिन्हां नूं गुरु ने अपने मंत्र नाल जोड़ लिया है। जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरू दा मंत्र पक गया है, दृढ़ हो गया है, उन्हां नूं जीवन दा कोई दुख कोई तकलीफ दुखी नहीं कर सकती। उह सदा हिरदे तों वाहिगुरू दे नाम नूं आराधदिआं आनंद ते सुख प्राप्त करदे ने, आनंद ते सुख महसूस करदे ने। सतगुरु जी कृपा करन, सभनां नूं दरों करों नामदान गुरसिक्खी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन जी। आओ हुण श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ होणगे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, श्लोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरौ जास विषम परे कै, नाम जपता गंत निकै। वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर, किने राम नाम एकाख्यर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी न आवै। काकि एक दर्श तुहारु, नानक हुन संग मोहे उधारु। सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ सनानी, प्रभ कै सिमरन दर गहमानी। प्रभ कै सिमरन हुए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल भला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभ का सिमरन सब ती उच्चा, प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा।
प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब के सुजै, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रुद माहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दर्शन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन दुख नेरी, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरी, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन ने चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चिनकार, सुख प्रभु सिमरन कंत न पार, सिमरै से जन जिन को ब्रह्म भया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पय सिजति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ सात, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवै तुपारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आगावै, जे मार्ग जात केला, तै हर नाम संघो सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तै पार पराही, अनिक बिगन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनिक जून जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबू न तू वै, हर का नाम कूट पव को वै, सा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग, जे मार के गण जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संतोषा, जे पैडे मंद गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जा पंथ तेरा को ना सुझानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाभ्यान तपत भोकाम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा त्रिका मन तुझ आकर कह, तह नानक हर हर अमृत बर कह, भग जना की वर्त नाम, संत जना कह मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस कर संत दिन रात, हर हर औक साथ कुमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नो दान, मन तन मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परै न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोजन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर की भगत प्रकट नहीं छ, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भो करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लत्ता, नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै, संत का संग बट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न हुए,
नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पिखे सर्व टंडोल, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कट शास्त्र सिमृत व्याख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सुगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार की ये बचतना, पुन दान हो में बहुरतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे, माँ उदास तपी सरथी, वैगन वाय होमत प्राण, कनिक सुहैवर भूम दान औली, कर्म करे बहुआ समझैन मार्ग संजम साधन, निमक निमकर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीरथ दे छुट्टे, गर्व गुमाना मन ते उठे, सोच करे दिन स रात, मन की मैल न तनते जात, इसलिए ही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वैभव दे अनि शुद्ध का होय काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियाणप जम का पव्या पैन, कि जतन कर तृष्ण ना त्रापै, भेख नि दुगनि बुझै, कोट पाव दर गै नहीं सिजै, छूट सुनाही उपै आलो, मोहि व्यापै माया जालो, वर करतू सगली जिम डानै, गोविंद भजन बिन तिन्हे मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुध गावै, जे को अपनी शोभा लोरै सा संगे हो मैं चूरै, जे को जन मरण ते डरै सा जिना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दस प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जानै नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा, क्या का मन हो सगल किरीना, हर हर नाम जिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिर साजना, सुख दुख जन समदृष्टिता, नानक पाप नहीं लिपा, निर्धन को तन तेरु नाओ, नितावे को नव तेरा ताओ, निमाने को प्रभु तेरु मान, सगल कटा को देव उदान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जान हुआ पे, अपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सात संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन सुन बकानी, सगल थान ते उत्तम था, नानक जी कट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आतिस चित रख नानक निभि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सा स्वार सिंगारिया, गर्भगण में जिन्हें वारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरध पै ऊपर सख सैन, मुख्य पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहो तो नानक सीजै, जे प्रसाद धारु पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पव कमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसै त्याग और संरचना, ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे, नानक काट लेहो प्रभ व्यापे, आदंत जो रखनार, तिस्यों प्रीतन करै गुवार, जाकी सेवा नवनी दबावै, तासो मूड़ा मन नीलावै, जो ठाकुर सा सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगै मान, तिसै बिसारै मुग्ध जान, सदा सदै भुलनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्याग कौटी संग रचै, साथ छोट छोट संग मचै, जो छटना सो अस्त्र करमानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन ले पुतारे तो वे गर्द प्रीत प्रसन्न संग हो, अंधकूप में पशु बिकराल, नान काट लो प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पे कंथन मल माया, छुप सुनाए कछ करे छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुहान, अंतर अगन बार दुन स्वाहा, गल पात्र कैसे त्रेता, जाके अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सह सुमार,
सुनेंदा कैसे मार्ग पावे, कर गैली होड़ निभावे, कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निष्कहिए तो समझे पूरा, कहाँ विष्णु पद गावे गुंग, चितन करे तो भी सुर पंग, कहे पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तुम्हां उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, संग सहाय सुहावे न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलुआ के गृह पितर वसै, अनद किल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने के जन्म, नानक राख लिहू अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम दारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुआए, नान कहु न सी जई बिन आवे पत जाए अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे, एक पी न दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे, जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुखता हु मन उठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोग नानक तिन पाया, गंत सब अपनी दे रास, खाद पीत पर तैन दुलास, अपनी मान कछ बहुत सावली, ज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रति ताप ही खूवे, बर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तु से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मन ने मत है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनेक पात माया के हित, सर पर होत जान अनेत, बिर की छाया स्यों रंग लावे, उबिन से मन पछतावे, जो दिशे सो चलन हार, लपट रहो ते अंधार, वटाओ स्यों जो लावे नेहिता को हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नान का भले लाई, मिथ्या तान तान कुटम सुबाया, मिथ्या हूँ मैं ममता माया, मिथ्या राज बंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेकस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान, अस्त्र पग साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे, मिथ्या नित्र पेकत पर त्रज रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लिच विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे, नानक हर हर नाम ले, वृथि सागत की आरजा, साज बिना कह होत सुचा बिरथा, नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय, गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जी कट बसु हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रह दबर कछवर कमावत, मन नी प्रीत मुखो गंट लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पीक न काहु पीर, अवर उपदेश आपना करे, आवत जावत जन में मरे, जिसका अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया या पहमाने, आप है आप आप करत निबेरा, किसे दूर चुनावत किसे बुझावत नीरा, उपाव से आन को सगल ते रहत, सब को जाने तुम की रहत, जिस पावत लय लड़ लाए, तांत नंतर रह समाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सुजाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहि, तिस ठाकुर को रख मन माहि, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसे इतिहास सदा मने अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ, पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
तिसे त्याग तबर लुभाव है जी प्रसाद सुखशेष सोई जय मनाठ पैर ताका जिसका विजय जय प्रसाद तू सबको मान मुक्ता को जिस रसन बकाने जय प्रसाद तिर रहता धर्म मन सुधा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गय मान पावे नानक पश्चेती कर जावे जय प्रसाद अरु कंचन देही लिव लावो श्री राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कह तू जय प्रसाद तेरे सगुल चिदर ठाके मन सरनी पारो ठाकुर प्रता कह जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अस्त जय प्रसाद अस्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाय उठत बैठ सच सह त्याय तिसे त्याय जो एक अलग कह इया उहा नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदानूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पिख है बिस्मात जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख से जी बसना जय प्रसाद हर्ष कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख से जमावे ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार किस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कौ जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्वराच जे प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ श्लोक अगम गात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचल कथाष्टपति साधक संग मुकुजल होत साध संग मल सगली कोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबीरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साधक सुभा ब्रह्मा सुमानी साध के संग गुचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतूं तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न ना साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्नो साध संग दुश्मन संभी साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरू साधक संग न भीगा पैरू साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होता साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लै साधु कै संग जर सह साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुंचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साधु साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर बराय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं किचका हाल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग कलोक तहरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै
पार ब्रह्म साधु दिवसै नानुकुदर सात सुन दसै सात कसंग सुनो हर नाओ सात संग हर के गुण गाओ साधक संग नमन ते विसरै सात संग सर पर निस्तरै साधक संग लग्या परम डिठा साधु कै संकट कट डिठा सात संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा भेद जान जिता सुने तिता बख्यान साधक उपमा त्यो गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साधक शोभा का ना ही अंतर साधक शोभा सुधा बेअंत साधक शोभा उच्च ते उच्ची साधक

जैसे राज रंको लागे तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजे ज्यो बसदा को खोदे को चंद लेप। ब्रह्म ज्ञानी कह है गुनाउ नानक ज्यो पाव कर सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जिला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारु परे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सूत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का हुए सुफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग। ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सुध जागत। ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही। ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन बाहे। ब्रह्म ज्ञानी कह कौन जाने। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाकिर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। ब्रह्म ज्ञानी साधु जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा। ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उरता रह जो अंतरनाम। सर्व मैं पेख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है। नानको अपर सगल निस्तार है। अष्टपति मिथिया नाही रसना परसु। मन में प्रीत निरंजन दर्शु। पर रूप न पिक है नेत्र। साध की टैल संग हेत। कर न सुन काहू की निंदा। सब ते जाने आप उसको मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हर है। मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोग ते रहत। नानकोट मध्य को ऐसा परसु। बैसनु सोजी सुपर सो प्रसन्न। विष्णु की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नहीं कर्म। तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे। केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मंत्र नंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वृह नाम जपावे। नानक वैष्णु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग। सगल त्याग दुष्ट का संग। मंते बिन स सगला परम। कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मलक हुआ। तिस भगवती की मत उत्तम हुआ। भगवंत की टहल करे नित नीत। मंथन अर्पय विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोध है। राम नाम आत्म है सोदय। राम नाम सारस पीवे। तिस पंडित का उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जो नायावे। वेद प्राण सिमरत बूझे मूल। सुख मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश। नानक पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। चौवरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए। सासन पावे जिन कोय। कर कृपा अंतर उर तारै। पस प्रेत मुग्द पात्र को तारै। सर्व रू काउ कद नाम। कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय।

बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जाकट है, संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै, संत कै दुखन सुख सब जाई, संत कै दुखन नरक में पाई, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा तेहीन, संत के हथे को रखै न कोई, संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यो लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्योन पाय, संत कै दुखन त्रिगत ज्योन किरमाय, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाय, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावै तावे भी गत पाहे, संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक किन टिक न पाई, संत का निंदक महत यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावै ता उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को नान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म है मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत दुखी का संत दुखी को नाही ठाऊ, नानक संत पावै ता ले मिलाय, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी किते काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीज अपे ही खाही, संत के दुखी गौर न रखन हार, नानक संत पावै ता लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सुध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो दिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै नया सा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए, पै किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोई, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसै ते आओ सास की रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठिया, अपना खेला करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम दे, बडभागी नानक जन सी। श्लोक तजहु सियानप सुरजन हो, सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पाउ जाय। अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एकै भगवान, जिसकै दियै रह अलाय, बहुर न तृष्णा लागै आय, मारै राखै को आप, मानुक कै किछ नाहीं हाथ,
तिसका हुकम भू सुख हुए, तिसका नाम रखंठपुर हुए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर्ग है नानकू जिल मत्था। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, चेतनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। एको एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग देव हर जन रहत। अंदिन कीर्तन केवल बखियान, गृष्ट में सोई निर्वाण। एक ऊपर जि जन की आशा, तिसकी कटिया जम की भाषा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक जिसे न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सो दत्त सी जिया, गुर प्रसाद तत् सबूजिया। जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल। न किच जन्मे न किच मरे, अपन चलताप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचताप थाप। अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धारहु ब्रह्मांड। अलख अभय पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। चिन प्रभ जाता सो सुभावंत, सगल संसार उदर तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल, गुरु का शब्द जब भय निहार। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़वा गय। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख उत्तम कर्मान। जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसे प्रहार संग। सह सुभाए हुए सो हुए, करने हार पछाने सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। किस्ते उपजे तिस माहे सुमाए, वे सुख निदान उन्हों बने आए। आपस को आप दीनो मानो, नानक प्रभ जाने को जान। श्लोक सर्व कला परपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गाडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाही।

लुच्चै कोई, तिस बिनाही तेरै किछ काम। गत नानक जपी घर नाम, रूपवंत होय नाही वो है। प्रभु की जोत सगल कट सो है, धनवंता होय क्या को गर्वै। जा सब किछ तिसका दिया दरबै, हत सूरा जे को गावै। प्रभु की कला बिना कहता है, जे को होय वह दातार। तिस देन हार जाने गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग। नानक सोजन सुदा अरोग, ज्यो मंदिर को थमै थमन। त्यों गुर का शब्द मने स्तमन, ज्यो पाखा नाव चढ़त रहे। प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगाश। गुर दर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावै। त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तिन संतन की बांछो तूर। नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिललाइयै। पूर्व लिखे का लिखिया पाइयै, दुख सुख प्रभु देवनहार। अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करै सोई सुखमान। भूला काहे फिरै अजान, कौन बसताई तेरै संग। लपटरे रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे। नानक पद सिद्धि कर जाहे, इस वखर को लैण तू आया। राम नाम संतन घर पाया, तज मां लेहो मन मोर। राम नाम हृदय महतोर, लाल खेप संतै संचार। अवर त्याग विख्या जंजाल, तन तन कह सब कोई। मुख उजल हर दर गए हो सोए, इह वापार विरला वापार है। नानक ताकै सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पियो। हर साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान। साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाई है। साध संग हर कीर्तन गाई है, अनेक विघ्न ते साधु रख है। हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गई संत है दर आया। सर्व सुख नानक ते पाया, मृत कौ जीवालनहार। भूखे कौ देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माही। पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका करण है जोग। तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी। सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया। नानक सोजन निर्मल दिया, जाके मन गुर की प्रतीत। तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत पग सुनिए त्यो लोय। जाके हृदय एक होए, सच करनी सता की रहत। सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार। सच वरतै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता। नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप नरेक न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। किसे बुझाए नानका, जिस होवै सुप्रसानू। अष्टपदी अबनासी प्रभ मन मै राख, मानु की तू प्रीत त्याग। तिस्ते परै नाही किच हो कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन इहो अनुराओ। मनसा जो पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग।
हरण भरण जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने हूर, अनद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनी है करता कै। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपिसर, गृष्ट में भोगी, त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस गुरु का किनंत न पाया। जाकी लीला कीमित नाही, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म की जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जंदे, जिंदास नाम त्यावै से, थ्यो गुण में जाको परमाहे, जन्म मरे फिर आवै जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग, नाना बिद किन्नो बिष्ठा, प्रभ विनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर्ण पूरे हो सब ठाए, नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारी सगले जंत, नाम के तारी खंड ब्रह्मांड, नाम के तारी सिमृत वेद पुराण, नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारी आकाश पाताल, नाम के तारी सगल आकार, नाम के तारी पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपने नाम लाए। नानक चौथे पद में सूजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समानी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत वचन सत उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसु करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पहे बिस्मात, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुरु कै वचन पदार्थ लहे। हुए दाते दुख काट नहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। श्लोक आद सच जुगात सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत्यावनहार। आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभुक्ता, सुरत सत सत सुनता, बुझनहार को सत सब हुए, नानक सत सत प्रभु सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रवे आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पै ते निरपौ हुए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माय समाना,
ਬਸਤ ਮਾਹੇਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਇ ਬੁਝ ਹੈ ਬੁਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ।

सा सा सुमार है, अपने जन का पर्दा टाक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद रख है, ताकि गत मित कोई न लख है, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक कुछ दे उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, नीकी कीरी में कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सास न काट ताप, ताकू राखत दिख रहात, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरते जात, मारन रखे अवर न कोय, सर्व जिया का रखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी, बारम बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इह मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्तानि, मंत नाम है नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै शुभ काम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगता तुम कह चाए, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह क न जानू, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर स्यानप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिखुद रह नानक, हर गुण गावस्पदी, सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सतगुर सिख का हलत पल सुवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बिचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परम, सह सियानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए, सफल दर्शन देखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे, सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पाव है तिस ले मिलाए।
जीवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनिक भगत बंदन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साधु ऐसा प्रभ जपने इहु हरस पावै जन कुए अमृत पीवै अमृत सुहुए उस पुरखा नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटै गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश को दे मोह माया कै संग न लेपो मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासी नानक परमो दुख तैती नासी तब तुम्हारी ठाट वरताई अनंत भया दुख ना ठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निरपो हुए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी तित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरत प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साधु कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कुमावना नानक इह तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक शिवर नाम आधार अवरो पाव समीत विसारो चरण कमल हृदय में उरतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत हे तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा खो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप दर गए जप नानक दर गए परवान मन प्रभु तो हर कह नाए दै जिस तावता बैठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहु नानक काटी जमपासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरै सु काचू काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रत्न जन्म का हुए उदार यों रत्न जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग ना

सुत मीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंगमाया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, असहस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मातू ले याने, भगत बिना बहु डूबे सियानी, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विक जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कैत रहत गत पावो, सार भूषत हर को नाओ, सह सुभाए नान गुण गाओ, गुण गाव तेरी उत्तर समय, बिन सजाए हूं मैं बिख फैल, हुए चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रासर नाम सुमाल, छाड़ सियान सगली मना, सास पावै सच तना, हर पूंजी संच करो बिहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूरयो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक दे पए, एक अराद प्राचत गए, मंतन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए अष्टपदी, जाचक जा

उठ के संकमात, इसका वर्ण चिन्ह न जापत, हरख सो तब हरख सो कह किसे व्यापत। जब अपने आप अपार ब्रह्म, जब अपन आप अपार ब्रह्म, तब मुह कहा किस होवत भरम, अपन खेला वर्ती जा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किसको गणी। जब एक हरगम पारु, तब नरक सुर्ग कहो कौन उतारु। जब निर्गुण प्रभ से सुभाई, तब शिव शक्ति कहो कित ठाई। जब आप अपनी ज्योत है, तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपनासन, तह जन्म मरण कौ कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो किचोए। जब अभिगत गोचर प्रभेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन चुट्टे कौन बंधन बाधे। अपना पापी चर जा, नानक अपन रूप आपी उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लिगत को कीस। तय छल छिद्र लगत को कीस, जय ज्योत स्वरूपी जो संसमावे। तय किसे पूकवन तृप्तावे, कर्ण करावन करने हार। नानक करते का नाहीं सुमार, जब अपनी शुभ अपन संग बनाई। तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन, जय सर्व कलाया पै परवीन, तय भेद कतिव कहा को चीन। जब अपना पाप उतार है, तो सगन अपसगन कहा विचार है। तय तो सगन अपसगन कहा विचार है, जय अपन ऊंचा अपन आप नीरा। तय कौन ठाकुर कौन कही अचीरा, बिस्मन बिस्म पहे रहे बिस्मात। बिस्म बिन बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानु आप। जय अचल अचेद अपेत समाया, उहां किसे व्यापत माया। पुष्कु अपै आदेश, त्यो गुण का ना ही परवेश। जय कह एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय अपना पाप त्यारा, तय कौन कतै कौन सुन निहारा। बहु बेंतूच दे उच्चा, नानक पुष्कु अपै पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच कार, त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पाप उनते पई कहावत, को नरको सुर्ग बंचावत। हाल जाल माया जिन जाल, हों मैं मुख परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपज्ञान। अपन खिलाप कर देखे, खेल संकुच है तो नानक कह। जय विगत भगत है आप, जय पिसरे पासार संत प्रताप। धूप आकाया पे तनि उनकी शोभा अनु बनी। आपे कौत करे आनंद चोज, आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावे तिस अपना इलावे, जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेशुमार था गंते तोले, ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तनहार। नानक को फसरिया, दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति। आप कथे आप सुनने हार, आपे एका विस्तार। जात भावे त सृष्ट उपाय, अपने भाणे ले समाये। तुम ते भिन्न नहीं किछ होए, अपन सु सब जगत पुरोए। जाको प्रभ जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल नाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनो विसार है। तिस तजवर कहा को जाए, सब श्रेक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सभात, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत पार, नानक दासुदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जीन भोपात, जो चुर चु सो तिसहत्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गायन। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक जानिया।
जन लागा हरे कह नाई, तिसकी आस न वृत्ति जाई। सेवक को सेवा बने आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जा के मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, दिन पूजै गुर के पैर। ये लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रव्या पह मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद। राम नाम सत करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन कहे है सो आओ। आठ पैर प्रबन टेको नीरा, मिटै ज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो पदे सिर दै बसाओ, मन चे नान खोल पाओ। हालत पालत दुले हुस्वार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच बिरिखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाई, दूह तल मन ते पौ जाई। सच व्यापार करो व्यापारी, जर गहने में खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माई, नानक बौर न आवै जाय। तिस्ते दूर कहा को जाय, उबरै रख नहार त्याय। निरभउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दूख, नाम जपत मन होवत सूख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँच नहार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेख तुदर श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहार, ताके निकट न आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया, सा संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास अस्त प्रदीप। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समगरी एक कटमा।

कथा उग्र प्रसाद नान सुख पाओ। वेद प्राण सिमृत में देख से सुन क्षेत्र में एक पानी प्रभु की सब को बोले आप डोल कबू डोले सर्व कला कर खिले खेल मोल न पाई अपने मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तारो स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तिन में हो विशास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग्रह चिन्ह जिन जाता तिसकी रह सत बचन साधु सब कैत जो जो हो सोई सुख मान्य कर्ण करावन हाथ प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो नानक दर्शन देख सम्मोहि आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत किस भावै ता करे विस्तार किस भावै ता एक अंकार अनिकला लखी न जाए जिस भावै तिसले मिलाए प्रभु निकट कवण कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज साफ जनाए नानक ते जनिया बुझाए सर पूता वरतारा सब नैना पेखनहारा सगल समग्री जा का तन आपन जसा पी सुना आवन जाने खेल बनाया क्या कार्य की निमाया सब कह मदलिप तो रह चुक कहना सो आपे कहे आग्ञा आवे आग्ञा जाए नानक जापा वै तां लै समाइस्ते होए सुना ही गुराव रह कहो कि न कछ करा भला कर तू ततनी किया पी जाने अपने जी की आप सरधारी सब साच उत पुत अपन संग्राज ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए तां सोझी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोयो तनवंत कुलवंत बतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन कहे है सुहाओ जन कह सिंह चित आवै नाओ जन कह संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे छिंद हास नित्या गुतरंग संजना की धूर मन मांगा छोड़ बेनती करो सा संगगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जीव गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक कह निस्तार सबल जीवन सबलता का संग जा कह मन लागा रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन करी प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत कह माथे नान कुदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन शरण ही आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर भय सबरी अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेवा जल बिगारते रहते राम नाम सुन रतना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक निभ ही खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधानी कागर चीत सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस होत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुल न होवे अवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कैवल सगल त्रिदा सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ये फल किस जन कै मुख भनी गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जा कह मस्त कर्म प्रपाए सा सर नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल सुबा अमृता की बानी एक नामन माहिष मानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उचता की शोभा बनी नानके गुण नाम।

कर्ता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जी बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथीना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार अख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जेते सुभावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोए करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत तवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तान भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है आठ साठ का स्नान सुना है पढ़ पढ़ पावे मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पात साह सुना है अंधे पावे राह
सुनै हाथ होवै असगाह नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछै पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भगण की सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जम कै सास न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पत सिउ प्रगट जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म से तीसन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावै मुख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तारै तारी गुर सिख मन्नै नानक पावै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचा सोहै दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कह करनै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर किता पार धरती होर पर होर होर तिसते भार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन पूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार ज्यो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे हे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोता है उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए सो अस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थेत कवण वार कवण से रुत्ती माह कवण जित हुआ आकार
वेल ना पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीकौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लाखो आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतिबा असुलो एक धात लिखा होए ता लिखिए लिखै होए विनाश मानक वड़ा आकी है आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सूरत ना पाईया नदियां अतैवाह पवे हैं समुंद ना जानिए समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तोल ना होवनी जेत समन होना विसरा है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना है देन ना अंत अंत न वेखण सुन ना अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ हे वड ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नगरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंगै जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुटै वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे किते आ दुख भूख साद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जितिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनु बखसे सिफत साला नानक पात साही पात साहू अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिव लाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ै करे वख्याण आख है बरमे आख है इंदो आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नार मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सका है केई के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बह संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे
सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुकम न करना जाई सो पात साहौ साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकु वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखियै एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निसान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़ियै रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कूड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़ियै बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां न जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ियै सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोद महाबल सूर तिन मै राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरै ना ठाके जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल
तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हसियार पाऊ खला अगन तपताऊ भांडा पाऊ अमृत तित ढाल घड़िय शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपाए शांतवा प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज केहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहु साहान गणि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिण कहै तो त्व सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकै नमस्तंग अनेकै नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरभ्रगे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगमे नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे आदेशंग आदेशे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निरबामे नमो सर्वकाले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग रसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सुखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अबर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है
अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयास छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, प्रपंगी परमाथे, समस्ति बेभूते, कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज रजवे सुवरंग परम रूपे, नमो जोग जुगवे सुवरंग परम सिद्धे, नमो राज रजवे सुवरंग परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी, अपोगी अपुगते, नमो जोग जुग वे सुवरंग परम जुगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसांग, नमो पुहपूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे समस्तो निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा बिरद करता, अदो ऊर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्त अस्तधामं, तेरा जोर चाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, आदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवंग निर्नाथे, नमस्तवंग प्रमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग अपंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोगे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्वहितंग, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व यंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व गृश्यं, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदारिद सिदं निवासी, चरपट शांत त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रूवाल शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख, देश और न भेस जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक, देव भेव न जानहि जेह बेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक मानहि पुरतीन, लोक चौदह के बिखय जग जापहि जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थापे ओ सब जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गणन पंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश, धर्म तामसो परम रहत अपूत अलख अपेश, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम, आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत,
अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रात पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेहि रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहाओ राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अपा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम नृपय निकाम अत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंड अंड बाडय चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथीसय अधीसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के अशेज देसै के अभिज भेसै के अगंज करम के अपंज भरम के अभिज लुक के आदित सुख के अवतूत वरण के बेभूत करण के राजम प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वरण के सर्वा आवरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपाओ अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीने के रुजी रजा कर ही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनेद है के रोजी दहेंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फाही में के आकल अला में के साहिब कला में के हुसनल वजू है तमामल रजू है हमें सुल सलाम सली खतमुदा में गनीमल सिकस्त है गरीबल परसत है बिलंदल मकान है जमीन अल जमान है तमीजुल तमाम है रजू अल निधान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगाधे शुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुवत स्वरूप है अशेज है अशूत है के नरकं प्रणाश है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है
अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अपभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ है, अगम्भ है, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट शांतो अप्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल शांतो अप्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामेत्र पंगी त्रिकामेन्द्र पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृस्वाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांतो त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सो सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसन चिराग हैं के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहेंद है के राजक रहेंद है क्रीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनीमल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब पिरा है की नरकुं प्रणास है बहसुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल उर्वन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शांत व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपव अनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपव अनास त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशे जगात आज जिनाम बात अन झंज गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म आत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बुर मना शांत तो प्रसाद करुणालय है रुकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रित के तरण है जग के कारण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कालखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है आकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राजे राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे कुजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल पुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें तुआ प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सुर सुरार दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पहे तो कहां पहे भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गाना नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सुधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपा दुरंत दुबा सु साज सना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तुर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की तार पछैया तुरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जा चुक अनेक सो एक दवैया दान वदेव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजातिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जी नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो
ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਆਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਸ਼ਾ ਕਉ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ, ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਾਸ਼, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਨ ਤਹਾਯੋ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਓ, ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ, ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਾਸ਼, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕਉ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਓ, ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਾਓ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਾਓ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰਿਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰਿਐ, ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰਿ ਹਉ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਮੋਹੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦਾਇਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸੈਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਾਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਬ ਅਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭਵ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹੇ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ, ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰੋ ਅਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਾਤਾ, ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੇ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ, ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰਿ ਹੋ,
रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै ले हो उबारी। सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। केल बेख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री असतुज जब पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला। मन बांशत फल पावै सोई, दुख न तिसै ब्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरके रह। हो जो याकी एक बार, चौपाई को कहै चौपाई। संबत सत्रह सहस पणि जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। सुइया पाए रहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मात एक ना माने। ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जाने। ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने। ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गहे तुहारू द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के, गहे तुहारू द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली मोहला तीजा, आनंद एको ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आईयां, शब्दोता गावो हरि केरा। मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सुवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे, सदा सिखत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु बिटहो। जिस दिया ए वडियाईया, कहे नानक सुनो संतो। शब्द तरहो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द, तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वासु कीते। काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कहो। से नाम हर कै लागे, कहे नानक तय सुख हुआ। तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देहे निमाणी। देहे निमाणी लिवै बाजाहो, क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया। एस नाओ होर थाओ नाही, शब्द लाग सुवारिया। कहे नानक लिवै बाजाहो, क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहै, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरहो जिनका मोह तुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया। कहै नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई, जन पावै।

अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुकत न पाए। फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखाओ बिन सतगुरु मुकत न पाए। आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावह सची बाणी, बाणी त गावह गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावह ए सची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पए रवाणी। कहे नानक सतगुरु भाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द से ती मन मिलया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव साकत आप उपाय कहे करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस सिउ लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजौ तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुतिया रैण विहाणी। गुर किरपाते से जन जागे, जिना हर मन वसया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रैण विहाणी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनहु विसारी है, मनहु क्यों विसारी है ए वड़दाता। जे अगन में आहार पहुँचावे, उसनो केहो पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए, गुरुमुख सदा संभाली है। कह नानक ए वड़दाता, सो क्यों मनहु विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया। लिब छुड़ की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाउ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लेव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै बिटहो रहे लोक वेल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौंपिया, विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे। हर वसै मन आए, हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका। जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वण जारा, हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपेओ जियो, लाहा खटेओ दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पहाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वण जारा। ए रसना तू आन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किता है। जिचर हर रस पल्लै ना पाए, हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तातू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, तातू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तातू जग मह आया।
मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान होवा जिन सतगुर सिओ चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस सुमाणी साचो अलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचा सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ दुआरे पर गट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नाव निद तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहेला साचे कर गावो गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्याव जा तुद पावे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक सच सोहेला सच्चै कर गावहे।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पे नी रहन जना मन चाओ। सिखी सिख्या गुर विचार नदरी क्रम लगाए पार। ओलू चक्का चक्की चक तलवार ओले बहुत अनंत।
1: लड़ा तू मदानी आन गा पंखी पौंदिया लैना सा। सूए चढ़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणत नंद। बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोए। नच नच हसे चले सिरो।

0: छाया हो मैं कर कर जंत पाया हो मैं बूझे कादर सूझे ज्ञान विहुणा कत कत लूझे नानक उपमे लिखिए लेख जेहा वेख तेहा वेख महला दूजा
1: हमें एहा जात।

0: सारे ने खाया सबको आख पाए होए पुराना सुटिए भी फिर पाई है होर नानक तक ना टुटे जे तक होवे जोर महला पहला
1: नाए मन्ने पतु पजै साला ही सतसोत अंदर के अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना

दुख संसार खुआ गुर नाव निध दरियाओ जन्म हम काल खो तोव सुख होटल गुर सेविय अहनस सहज सबाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजवां गुरपुरा कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी गुरपुरा कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत पैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पाए कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पै पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप पै सब पावन जन नानक सुख घर आया बिघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुग हो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी अति सत्कारियो साध संगत जियो वड़े भागा वाले हो रोजाना अमृत वेले अपने रजेवियां विचों कुछ समा कढ सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करके अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करन दा उपराला उद्यम करदे हो। अज भी सतगुरां बख्शिश कीती सवाग समा सतगुरां दी मेहरामत सदका सानूं सारिआं नूं सतसंगत विच जुड़न दा नसीब होया। हुणे आप जी ने गुरु घर दे हाजुरी कीर्तनी सत्कार योग भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला गुरद्वारा श्री बंगला साहब दिल्ली वाले उन्हां दी रचना तो संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। समा होया इस पावन अस्थान ते गुरु शब्द विचार दा। अज अमृत वेले मेरे सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी

अमय दृष्टु शुभ कर हर अभ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वास कर सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार खुब गुरु नाव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण

0: आनंद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आओ सत्कार जो शासन जी महाराज बख्शी की जी आपने बड़ी श्रद्धा भावना सहित पवित्र गुरबाणी आशा के वादे सबूर कीर्तन सरण कीते ने, परंतु अज हुकुम नामे की कथा चार सरण की है। सत्संग जी अरदास परे प्रंत महाराज बख्शी पवित्र हुकुम नामे सरण कीते ने। सो सत दस पाशाह में गुरु साहब ने आप गुरु मुखा तुम बख्शिश किया है। और सत संघ दर्शन तुम पता है कि डड़ीवाल साहब पाठ हो रहे हैं, भाई साहब ठीक 10 बजे तक डड़ीवाल साहब पाठ करेंगे। सो सारी संघ तुम बेनती है जो करंज बैठ के आप डड़ीवाल साहब पाठ कर रहे हैं, सो जरूर भाई रजिंद्र सिंह संपर्क करके अपना नाम नंबर उन्होंने दे दौ। उन्होंने नंबर है 408-712-4145 अपना संपर्क करो ताकि समय समय सिर तुम जो भी अपना बनेगा इसका जो समय के मुताबिक ये बंदोबस्त करना, ये सारे जी वैबसाइट पाठ बद पर चल रहे हैं, इन्हों संपूर्ण भोग पैने ने, होर भी जो समागम होंगे वो बारे आप टेलीफोन करके भाई साहब सूचित कर दिया करे। इस बार थोड़ा टेलीफोन उन्होंने को होना जरूरी है। सुभाव सार सिंह जैव सिंह तुम पता है कि गुरु घर जो नार चार सौ साल डबल बिल्डिंग बन रही ने, कहते बेअंत खर्चा हो रहा है। सब संगत बेनती है बेअंत पुराणा वालों बेअंत माया आई है वटभागी हैं जिन्हें अज तक अपना दसा सफल नहीं किया। सारे बेनती है जरूर गुरु घर अपनी माया सफल करके जरूर अपने गुरु के बख्शियां दातों हिस्सा पा के ये जो डबल बिल्डर बन रही ने सारी कोशिश करके इन्हों चाढ़ी कला संपूर्ण करने वास्ते गुरु साहब के चरणों के धन्यवाद करिए। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि खालसा स्कूल खुल चुका है, सो तुम जरूर आप अपने बच्चों खालसा स्कूल दाखिल करवाओ, पंजाबी पढ़ाओ ताकि गुरबाणी पढ़ सकन और सदा वास्ते गुरसिक्खी नाल जुड़े रहन। सत्संग जी आप संगत बेनती है कि अगस्त 3 है संपूर्ण का पुरब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच पातशाह जी का, इस वे जरूर सत्संग तुम बेनती है कि 30 अगस्त को हाजरियां भरनिया ने। सत्संग जी आप संगत बेनती है 11, 12 और 13 31 रागों का कीर्तवार हो रहा गुरु घर साहब हो जी, सारी संगत बेनती है कि जरूर हाजरी भरो। अरे जो समाज इस लाभ उठाने अपने हर हाल जत्र करने ने। सत्संग जी 17 है पहला प्रकाश साहब ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का। सत्संग जी साढ़े वास्ते एक महान पुरब है जो किसी गुरु साहब ने साढ़े से बख्शिश की है, सो असी जरूर इस अपने महाराज साहब चरण धन्यवाद करने शुक्रिया अदा करते खुशियां प्राप्त करिए। और सत्संग जी भाई साहब तैयार ने सारे प्रणाम करके सानू करिए। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 1003 तो श्री सहज पाठ प्रारंभ होणगे। आप जी ने प्यार सहित हाजरियां भरनिया हन जी। 1003 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

की बार सगल ले चलिया। निर्भव निरंकार दयालिया, जी जंत सगले प्रतपलिया। रहा एक कै श्रम कर गाडी कड है, एक कै सुपने दाम न चढ़ है। राज कमाए करी जिन थैली, ताकै संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड थे प्यारी, एक संची तज बाप महतारी।

सो जन नानक पार ग्रामी भ्रमत भ्रमत प्रभ सरणी आया दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस भावै तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जप तप संजम इसते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मागै दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत

मारू महल्ला पंजवा। तृप्त आघाई संता गुर जाने जिन मंता, ताकि किच कह न जाई जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगहै अतोला नामो रहाओ, अभिगत स्यों मान्या मानो गुरमुख तत् ज्ञानो। पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, निहचल तिन काठाणा गुरते महल पछाणा। आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे, पूरन तृप्त अगाए सहज समाध सुभाए। हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया, मारू महला पंजवा घर छेवा दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा, मिल साध त्याग गुमान अवर सब किछ मिथिया, रसना राम राम बखान। मेरे मन करन सुन हर नाम, मिटह अग तेरे जन्म जन्म के, कवन बपरो जाम रहाओ। दुख दीन न पौ व्यापै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिने नाम विसारिया, से होत देखे खेहे पुत्र।

मन देहे रहाओ, बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत मेहे। हर भगत दृढ़ मल साध नानक, तेरा काम आवत एहे। मारू महला पंजवा, पुरख पूरन सुख है दाता, संग बस्तो नीत मरे न आवै न जाए, बिनसै व्यापत उस नसीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निधाना, इह निर्मल रीत रहा। कृपाल दयाल गोपाल गोविंद, जो जपै तिस सीध। नवल नवतन चतुर सुंदर, मन नानक तिस संग बीध। मारू महला पंजवा, चलत बैसत सोवत जागत, गुरमंत्र हृदय चितार। चरण सरण भज संग साधु, भव सागर उतरह पार। मेरे मन नाम हृदय धार, कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों। अवर सगल विसार रहा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार। गोविंद भज सब सुवार्थ पूरे, नानक कबहू न हार। मारू महला पंजवा, ताज आप बिन सीताप, रेन साधु थियो तिसह प्राप्त।

मीत साजन सखा बंधप हर एक नानक कियो मारू महल्ला पंजवां। प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत न सेक सोई स्वामी इहां राखै।

जब गुरु चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस मह पाग्यो मारू अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका अड़सठ तीर्थ बहु घना भ्रम थाके भेखा साचो साहिब निर्मलो मन मन एका तू अजरावर अमर तू सब

सच्चा व्यापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे भाई कार कमावनी नित टोटा सह सारा साची संगत थान सच सचे घर बारा सच्चा भोजन पाओ सच सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पात साहिया दुख सुख संघारा मोटा नाव धराइया गल औगन भारा मानस दात न हो गई तू दाता सारा अगम गोचर तू धनी अविगत अपारा गुरशब्दी दर जोई मुक्ते भंडारा नानक मेल न चुकई साचे व्यापारा मारू महला पहला बिख बोहे था ला

पारु वंजी हाथ न केवटू जल सागर सरालु बाबा जग फाथा महाजालु गुर प्रसादी उपरे सच्चा नाम संभालु रहाऊं।

दीन रहाओ। अवगुण सुपार गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाऊं। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा धन नाही। जिन कह ना

बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरन दे जिन किया तिन देखिया आप वडाई दे नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप नार न पुरख न पंखनु साचो चतुर स्वरूप जो तिस भावै सो थीऐ तू दीपक तू धूप गीत साध चाखे सुने बाद साध तन रूप सच भावै सच उचवै छूटै सोग विजोग नानक नाम न विसरै जो तिस भावै सो होग मारू महला पहला साची कार कमावनी होर लालच बाद इहो मन साचै मोहिया जिहवा सच साध बिन नावै को रस नहीं और चल है बिखलाद।

गुर की मत निकी, साची सुरत सुहावनी, मन मुख मत फिकी, ता मन तन तेरा तू प्रभु, सच तीरक तुरकी, सच्चे बैसन उठना, सच भोजन खाया, सच्चे बैसन उठना, सच भोजन पाखिया, चित सच्चे वित्तो सच्चा, साचा रस चाखिया, साचे कर साचे रखे, गुर बचन सुपाखिया, मन मुख कौवाल सकणु, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगै नित चोगड़ी, लग बंद विगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त हुए, साचे निज ताड़ी, अनहत लाला बिदया, प्रभ हित प्यारी, बिन साचे जियो जल बलों, झूठे वेकारी, बाद कारा सब होछिया।

ठाउर न ठाऊ, लाल लाल त्या गया पाया हर नाऊ। तू बख्शहता मेल लहे नानक बल जाओ, मारू महला पहला लाल गर्भ छोड़िया। गुर कै पै सहज सुभाई, लाल खसम पछाणिया। वड्डी वड्याई कसम मिलिया सुख पाया, कीमत कहन न जाई। लाला गोला खसम का खसम है वड्याई, गुर प्रसादी उभरे हर की सरनाई। रहाओ लाले नो सिरकार है तुर खसम फुरमाई, लाले हुक्म पछाणिया सदा रह रजाई। आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई, आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई। तेरी सेवा सो करे जिसनु लह तू लाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे भरम खुआई। सो क्यों मनो विसारी है नित देवै चढ़ै सुवाया, जियो पिंड सब तिसदा साहू तिन्हें विच पाया। जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया, लाला सो जीवत मरे मर विच हूँ आप गवाए। बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए, सब में नाम निधान है गुरमुख को पाए। लाले विच गुण किच नहीं लाला अवगुण यार, तुद जेवड़ दाता को नहीं तू बख्शनहार। तेरा हुक्म लाला मन्ने ये करनी सार, गुर सागर अमृत सार जो इच्छे सो फल पाए। नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए, गुर सेवा सदा सुख है जिसनु हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब धात है माटी रल जाई, बिन नावै नाल न चली सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई। मारू महला पहला हुक्म भया रहना नहीं, तुर फाटे चीरे इह मन अवगुण बाधिया। सहो देह शरीर है पूरे गुर बख्शाई है, सब गुनहा फकीर है क्यों रही है उठ चलना। बुझ शब्द बिचारा जिस तू मिले सो मिले, तुर हुक्म अपारा। राव ज्यो त्यो राखे त्यो रहा, जो देह सो खाओ ज्यो तू चलावे त्यो चला। मुख अमृत नाओ मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया, मिल है मन चाओ किता क्या सा लाही है। कर दिख है सोई जिन किया सो मन वसै, मैं अवर न कोई सो साचा सा लाही है। साची पत होई पंडित पढ़ न पहुंचई, बहुआल जंजाला पाप पुन दो संग में खुदया जमखाला। वे छोड़ा पहु विसर पूरा रखवाला, जिनकी लिख है पत पवै से पूरे भाई। पूरे पूरी मत है सच्ची वड्याई, देते टूट न आवई ले ले थक पाई। खार समुद्र टंडोली है एक मणिया पावै, दोए दिन चार सुहावना माटी तिसखावै। गुरसागर सत सेवी है दे टूट न आवै, मेरे प्रभ भावन से उजले सब मैल परी जै। मैला उजल ताथी है पारस संग भीजै, बन्नी साचे लाल की किन कीमत की जै। भेखी हाथ न लभई तीर्थ नहीं दाने, पूछो बेद पढ़ंते आ मुठी बिन माने। नानक कीमत सो करे
ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਵਿਗੁਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਤ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੈ ਦਿਸੰਤ

उदर पर है जैसे ढूर है, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द देख लिव लागी, तेरे नाम रते तृप्तासी रहाऊ।

राम पदार्थ पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी, खाणी बाणी गगन पाताली, जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम।

ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नामृत्य विचारी खाणी बाणी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम।

आओ गुरु प्यारे साथियों जी, अज दे पावन पवित्र दिहाड़ा होला महला अती वैसाखी दा पूर्व ए दीवान इना खुशियां दे विच सजे हन। संगता बड़ी दूर दूर चल की गुरु दरबार दे विच पहुंच रही हैं। पहला शब्द आप जी ने सरवण किया, आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना। फिर गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सभी काज सवार, ऐसी भावना ऐसी श्रद्धा लेके पहुंच रही हैं। संगता सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमार। गाविये सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। साडा आउण दा समा सफल हो जाए जे सतगुरां दे चरणां नाल जुड़ के ए श्रद्धा दी भावना दे नाल कि मालका तेरी सरण दे विच आए हां, कृपा करी मेहर प्रिया हथ रखी। आउण वाले समय दे विच संगता दे सारे कारज आप जी ने सवारने हैं। सो आओ गुरपुरा नमस्कारी प्रभु सब

0: संतान गुरु अर्जुन देव महाराज जी के आगमन पर आप सब संतान बहुत बहुत बधाइयां हैं और इन्हें खासी प्रमाण कर लो, सारे आशीष बख्शिश करो, फतेह बुलाओ।
1: वाहे गुरु जी का खालसा। वाह।

ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी जिस तरह का भी आप, ब्रह्म ज्ञानी का बढ़कर ताप, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा में इसका नाम, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी को